0: भनेको छु चलाकुती खाने बेलामा बडो प्रेममा फसेर अन्धो भने फाइल निस्कन्न भन्छस्
1: निस्किन्न आमा म कहाँ जाउने
0: क्या बोलेको तू क्या तेरे दवान मैंने देख छु हां ला ये करंट है ना करंट ला
1: हां मुझे
0: जल्दी जल्दी निकल जल्दी निकल निकल
1: नहीं
0: निकल जा हां हां ये दरवाजे से निकल जा निकल जा और अंदर वो दरवाजा बंद कर दो
2: जी हां।

0: खाने बेलामा बडा प्रेममा फसेर अन्धो भने अहिले निस्कन्न भन्छस्?
1: निस्किन्न आमा, म कहाँ जाउने?
0: क्या भन्यो तू? क्या तेरे दवान मैंने देखी? हाँ ला, ये करे ठे न करे ला।
1: हाँ मुझांचा,
0: हाँ मुझांचा, जल्दी जल्दी निकल, जल्दी निकल, निकल,
1: नहीं
0: निकल जा। हाँ हाँ, ये दरवाजे से निकल जा, निकल जा। और आंदाज वो दरवाजा बंद बंद कर दो।
2: जी हाँ मार्केट।